0: Temperatures will range between 27 and 32 degrees, moderate to fresh easterly winds. At the observatory right now it is 29 degrees, the relative humidity is 81%, and that's the news from RTHK.
1: प्रोग्राम सुनिए हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबिद अली बेग के साथ. तावुन है होम अफेयर्स डिपार्टमेंट का.
2: अस्सलाम वालेकुम. हांगकांग की शाम की एक और खूबसूरत महफिल में हम और आप साथ साथ हैं. आरटीएचके रेडियो 3 पर हमारा ये मिलन होता है आवाज दुनिया के खूबसूरत रंगों के साथ हर इतवार की शाम ठीक इसी वक्त सन 2004 से.

नाग भी हो सकता है और नींदें उड़ाने वाला भी। एम्प्लॉयर्स को टाइफून, तूफानी बारिशों या सुपर टाइफून के बाद इंतहाई हालात यानी एक्सट्रीम कंडीशंस में काम के इंतजाम पर मुलाजमीन के साथ पहले ही से तय करना चाहिए, जैसा कि ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग, काम से फरागत के औकात, काम का दोबारा आगाज और घर से काम करना वगैरह। जब हुकूमत इंतहाई हालात का ऐलान करती है, सिवाय काम के लिए रजामंद जरूरी अमले के, मुलाजमीन को महफूज मकाम पर रहना चाहिए, फौरी तौर पर काम पर नहीं जाना चाहिए और हुकूमती ऐलानात को सुनना चाहिए। तफसीलात के लिए देखिए लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोड ऑफ प्रैक्टिस इन टाइम्स ऑफ टाइफून्स एंड रेन स्टॉर्म्स।

0: सुनहरे दिनों का सुनहरा गीत गा रहे थे अहमद रुश्दी।
1: साहब जी, जब दरख्त जवान हो तो मैं बूढ़ा आदमी उसकी काट छांट नहीं कर सकता। माली बाबा ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, जब पौधा नाजुक हो तभी उसकी शाखें तराशना आसान होता है, पीछे तने पर कोई निशान तक नजर नहीं आता। माली बाबा ने अपना फलसफा बयान करते हुए कहा, ठीक है करमू बाबा, लेकिन इस बात का मेरे मसले से क्या ताल्लुक? मैंने कुछ उकताहट से सवाल किया। अच्छा ठहरे, पहले मैं आपको अपना तारुफ तो करा दूं। मेरा नाम अरमगान आलम है, शहर में अच्छी नौकरी है। मसला यह है कि मेरा बेटा खालिद अरमगान मेरी बात नहीं मानता और सुनी अनसुनी कर देता है। उम्र उसकी 16 साल के लगभग है। लॉन में खड़ा था कि वो माली बाबा के सामने मुझसे बदतमीजी करता हुआ बाहर चला गया। माली बाबा, खालिद को मैंने क्या नहीं दिया? अच्छा खाना पीना पहनना, अच्छी तालीम, हर सहूलत दी है उसे मैंने। मैंने अपनी बात जारी रखी, साहब पौधा जब छोटा होता है तो उसे खाद और पानी के साथ साथ तराश खराश और तेज हवा और धूप से भी बचाव की जरूरत होती है। आपने खालिद साहब

0: खाद और पानी तो खूब दिया, लेकिन उनके तराज खराज से बेपरवाह रहे। इधर आए साहब, माली बाबू मुझे एक दरख्त के पास ले गया जिसका तना बिल्कुल सीधा और खूबसूरत था। देखें, इस तने की खूबसूरती का ताल्लुक उस काट छाट के अमल से है जो मैं इसके बचपन में करता था। जो शाख इसके तने पर उगती उसे प्यार से हटा देता, और आज देखें इसका तना कितना सीधा और खूबसूरत है। माली बाबा ने अपना तजर्बा पेश करते हुए कहा, साहब जी आप मेरी बात समझ रहे हैं? माली बाबा ने मुझे देखते हुए कहा, जी जी आप बात करते रहें। मैंने फौरन कहा, बच्चे भी नाजुक पौधे के मानिंद होते हैं। 10-12 साल का वक्त महज खाद पानी का नहीं बल्कि तराश खराश और काट छांट का भी है। साथ साथ माहौल की तेज धूप और तेज हवा से भी उन्हें बचाना है। और अगर ये काम हम 12-13 साल के बाद शुरू करेंगे तो तने पर उसके निशान जब्त होंगे और दरख्त अपनी खूबसूरती खो बैठेगा। माली बाबा ने अपनी बात मुकम्मल की। जी माली बाबा, अब तो खालिद 16 साल का हो गया है, अब क्या करूं? मैं अपने मौजूदा मसले का हल चाहता था। उसे अपने आप से मानूस करें, जब वो आपके सामने आए तो हंसकर बात शुरू करें, जब वो घर आता है आपसे डर कर फौरन अपने कमरे में चला जाता है। जो खराबी 16 साल में पैदा हुई है उसे 16 दिन में ख़त्म करने की कोशिश ना करें, वरना तना चटक जाएगा। माली बाबा कैसी तजर्बे की बात कर रहे थे। जब भी बात करें पहले उसकी खूबियों की भी तारीफ करें, फिर एक आध मुख्तसर हल्का फुल्का जुमला नसीहत का बोलकर उसे तूल ना दें, और गुफ्तगू का खात्मा भी मुस्कुराहट के साथ करें। साहब जी, मिट्टी की गोदी आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल की जाती है, तब जाकर जरखेज मिट्टी बाहर आती है। माली बाबा की बात ने मेरे सर के ऊपर से बोझ उतार फेंका था। इतने में खालिद घर में दाखिल हुआ और सलाम करके तेजी से कमरे में जाने लगा। खालिद बेटा, आपकी तबीयत कल कुछ खराब थी, अब कैसी है? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। जी अब्बू बेहतर है। खालिद ने हैरत से मुझे देखते हुए तेजी से जवाब दिया। बेटा अपना ख्याल रखा करो, मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। और मैं माली बाबा का दिया हुआ सबक सीख चुका था कि 16 साल की खराबी 16 दिन में ठीक नहीं हो सकती, और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल की हुई गोदी ही जरखेज मिट्टी बाहर निकालती है। मैंने कहीं पढ़ा था, यतीम वो बच्चा नहीं है जिसे उसके वालदेन दुनिया में तनहा छोड़ गए हों। असल यतीम तो वो हैं जिनकी माओ को तरबियत औलाद से दिलचस्पी नहीं है और बाप के पास उनको देने के लिए वक्त नहीं है। बच्चों को बुराइयों के सैलाब से बचाने के लिए मौजूदा दौर की औरत को खुसूसन अपने औकात कार, घर के निज़ाम, बच्चों की दिलचस्पी और अपनी लापरवाहियों पर तवज्जो देनी होगी, और उस सकाफती जलगार का मुकाबला इस्लामी रंग को अपना कर ही किया जा सकता है। रंग उसी कपड़े पर अच्छा चढ़ता है जिसका अपना कोई रंग ना हो। अपनी औलाद और घर के अफराद का अपने रंगों से निकाल कर अपनी औलाद और घर के अफराद का और रंगों से निकाल कर सिबकतुल्लाह में रंगना ही इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए काफ़ी होगा इंशाअल्लाह।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एहसन खान। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने इंतहाई अच्छे मेज़बान आबिद अली बेग के साथ। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।

लू तूफानों और सैलाबों को ले लीजिए, ये तमाम एक प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं और कुदरत ये प्रोग्राम फीड करने के बाद उनसे लातालुक हो गई। वो खामोश हो गए। मैंने अर्ज किया, जनाब मैं अब भी आपका नुक्ता नहीं समझ सका। वो बोले, दुनिया का कोई पहाड़, कोई दरख्त, कोई जानवर, कोई सितारा और कोई सैयारा अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इस खूबी से नवाज रखा है कि वो अपने रब की खुशनूदी हासिल कर सकता है, वो उसे राजी कर सकता है। मैंने अर्ज किया, जनाब मैं भी तो यही आपसे पूछ रहा हूं। वो मुस्कुराए और बोले, लेकिन इस नुक्ते को समझने के लिए मुझे पीछे तारीख में जाना पड़ेगा। मैं खामोशी से सुनने लगा। वो बोले, आप शैतान और हजरत आदम का वाक्य देखिए। अल्लाह ताला ने शैतान को हुक्म दिया वो इंसान को सजदा करे। शैतान ने हुक्म दूली की, अल्लाह ताला उससे नाराज हुए और उसे हमेशा हमेशा के लिए रानदाय दरगाह कर दिया। शैतान आसमानों से उतरा और करोड़ों साल से जमीन पर ख्वार हो रहा है, जबकि उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने हजरत आदम को गंदम का दाना चखने से मना फरमाया। हजरत आदम ने भी अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ताला उनसे भी नाराज हुए और उन्हें भी आसमान से जमीन पर भेज दिया। लेकिन हजरत आदम के रवैये और शैतान के रवैये में बड़ा फर्क था। वो दम लेने के लिए रुके और दोबारा गोया हुए। शैतान जमीन पर आने के बावजूद अपनी बात पर अड़ा रहा, जबकि हजरत आदम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अल्लाह ताला से तौबा करने लगे। वो सजदे में पड़े रहते थे, रोते जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कोताही, अपनी गलती, अपने जुर्म और अपने गुनाह की माफी मांगते जाते थे। हजरत आदम की तौबा का ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल ना कर ली और मशीयत इज़दी उनसे राजी ना हो गई। वो खामोश हो गए। हमारे दरमियान खामोशी के बेशुमार पल गुजर गए। जब ये वक्फा तवील हो गया तो मैंने अर्ज किया, जनाब मैं अब भी आपकी बात नहीं समझा। वो मुस्कुराए और नर्म आवाज में बोले, अरे अल्लाह ताला का इंसान के लिए सबसे बड़ा इनाम तौबा है। इंसान इस इनाम, इस तोहफे के जरिए अल्लाह ताला की ज़ात को राजी कर सकता है, और वो अल्लाह जो अपने बंदे की किसी खता, किसी जुर्म, किसी कोताही और किसी गुनाह से नाराज़ होता है, वो अल्लाह ताला बंदे की तौबा मान जाता है और इस बंदे पर अपने रहम, अपने करम और अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोल देता है और यूं इंसान सुकून में चला जाता है। वो रुके और दोबारा बोले, जब तक इंसान को अल्लाह की मोहब्बत, करम और रहम नसीब नहीं होता, उस वक्त तक इंसान सुकून, आराम, चैन, खुशी और मसरत हासिल नहीं कर पाता। खुशी, खुशहाली और सुकून अल्लाह की रजामंदी से मुंसलिक है, और जो शख्स, जो कौम और जो तबका अल्लाह ताला की रजामंदी से महरूम हो जाता है, उसका सुकून, खुशी और खुशहाली छिन जाती है। चुनाचे जब भी इंसान का रिज़्क तंग हो जाए, उसका दिल मसर्रत और खुशी से खाली हो जाए, वो चैन और सुकून से महरूम हो जाए और उसे ज़िंदगी में एक तपिश, डिप्रेशन और टेंशन का एहसास हो, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला के हुजूर झुक जाए, वो कसरत से तौबा करे और वो अल्लाह ताला को राजी करे। मैं खामोश रहा। वो बोले, ये सुकून का एक नुस्खा है। सुकून का दूसरा नुस्खा माफी है। हम लोग दिन में औसतन 100 से 300 गलतियां करते हैं। अगर हम हर गलती पर माजरत को अपनी रूटीन बना लें, हमने जल्दबाजी, बेपरवाही, नफरत, गुस्से, तकब्बुर और हट धर्मी में जिस शख्स का हक मारा, हमने जिसको नुकसान पहुंचाया और हमने जिसको डिस्टर्ब किया, हम अगर फौरन उस शख्स से माफी मांग लें तो भी हमारी जिंदगी में सुकून, आराम और खुशी आ सकती है। हमें माफी मांगने में कभी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि माफी वो चट्टान है जिसके नीचे सुकून, खुशी और खुशहाली के चश्मे छुपे हैं, और जब तक हम ये चट्टान नहीं सरकाएंगे, हम खुशी, खुशहाली और सुकून का ठंडा पानी नहीं पी सकेंगे। वो रुके और दोबारा बोले, याद रखो, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शैतान तौबा और माफी से दूर रहता है, जबकि अल्लाह के बंदे इन दोनों चीज़ों को अपना रूटीन बना लेते हैं। हठधर्मी, तकब्बुर, जुल्म, जिद, नफरत और गुस्सा
شیطان

लेबर डिपार्टमेंट 16 और 17 सितंबर को बैंकॉक के मैकफर्सन स्टेडियम में दो रोजा लार्ज स्केल जॉब फेयर बिल्डिंग अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस जॉब फेयर के नाम से मुनक़िद करेगा। मुख्तलिफ सनअतों से ताल्लुक रखने वाले लगभग 50 एम्प्लॉयर्स मुतअद्दिद अक़साम की मुलाज़मतों के मौक़े पेश करेंगे। तकरीब के दौरान एम्प्लॉयर्स इन आसामियों को नुमाइश के जरिए मुतारिफ कराएंगे, मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद से बातचीत करेंगे और मौके पर ही दरख्वास्तें वसूल करेंगे। अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं तो इस जॉब फेयर में शिरकत का मौका जरूर हासिल करें, जो सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। शिरकत करने वाले इदारों और दस्तियाब आसामियों की तफसीलात के लिए बराए करम मुलाहजा कीजिए www.jobs.gov.hk। दूसरों को अपनी ज़ात पर हंसने का मौका दें और उम्दा और बरवक्त मजाक की खुद भी दाद दें और दूसरों की तरबियत भी करें ताकि लतीफ़ बात कहने सुनने का रिवाज हो सके। लतीफ़ बात हज़ार फ़लसफ़ों पर भारी होती है और कानों से सीधी दिल में उतर जाती है। हाफिज़ा उसे यूं कबूल करता है कि बात कभी भूलती ही नहीं। लाहौर का वाकया है कि एक मौलाना अपनी गाड़ी चलाते हुए एक यकतरफा सड़क पर जा रहे थे। एक खातून जिन्हें शादी में शिरकत करने में देर हो रही थी, बोखलाहट में कानून को तोड़ते हुए ममनू सम से गाड़ी ले आई और दोनों गाड़ियां मेंढों की तरह भिड़ गईं। खातून और मौलाना दोनों दरवाजे खोलकर बाहर निकले। अभी किसी फरीक ने कुछ भी न कहा था कि एक साहब जो सारा मंजर देख रहे थे बोले, मौलाना यही वो मकाम है जहां दीन और दुनिया आपस में मिलते हैं। मौलाना मुस्कुराते हुए उन साहब के पास गए, हाथ मिलाए और कहा, मैं ये हादसा तो भूल जाऊंगा मगर आपका हसीन मजाक उम्र भर याद रहेगा, और सुभान अल्लाह कहते गाड़ी की तरफ लौटे। इस पर वो खातून बोली, ये हादसा मैं भी भूल जाऊंगी मगर मुझे नजरअंदाज करते हुए जिस तरह आप एक तमाशबीन की तरफ बढ़ गए, ये जख्म हमेशा ताजा रहेगा। हांगकांग की शाम की आज की महफिल आपने RTH के रेडियो 3 पर सुनी, जिसे पेश करने में तावुन था होम अफेयर्स डिपार्टमेंट हांगकांग का। ये नशियात इंटरनेट पर लाइव या गुज़िश्ता एक बरस के प्रोग्राम्स आर्काइव में सुनने के लिए विजिट कीजिए RTH के रेडियो 3 की वेबसाइट या डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्टफोन पर RTH के ऑन द गो या RTH के माइन नामी ऐप। आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह आइंदा इतवार 8 बजे की खबरों के फौरन बाद। अपने मेज़बान आबिद अली बेग को इजाज़त दीजिए। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। शब बखैर और अल्लाह हाफिज़।

0: बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा बाग पे बैठा पानी ताप।

का झाड़ पूंछ पे लेकर चले पहाड़। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन हो।

0: के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगर इस है बट पर वॉट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान, पी आई पी अटरवेर बनिया।
1: Oh, that track brings back so